कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। एक आईना था सो टूट गया, अब खुद से अगर शर्माओ तो क्या। तुम आस बंधाने वाले थे, अब तुम भी हमें ठुकराओ तो क्या। दुनिया भी वही और तुम भी वही, दुनिया भी वही और तुम भी वही, फिर तुमसे आस लगाओ तो क्या। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूं, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। जब देखने वाला कोई नहीं, बुझ जाओ तो क्या, गहनाओ तो क्या। एक वहम है ये दुनिया में अभी, कुछ खो तो क्या और पाओ तो क्या। है यूं भी जियां और यूं भी जियां, है यूं भी जियां और यूं भी जियां, जी जाओ तो क्या, मर जाओ तो क्या। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेजबान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।

0: इलेक्शन में रहबरों की रिजा से पहले आवाम से इतने आम लेंगे ये तय। किसी भी उलझन में रहबरों की रिजा से पहले आवाम से इतने आम लेंगे ये तय हुआ था। और तमाम तर हल तलम मसाइल को हल करेंगे जो तय नहीं है वो तय करेंगे ये तय वफा करेंगे
1: ये
0: तय हुआ था। वतन की खातिर जिए मरेंगे
1: ये तय हुआ था।
0: बवक्त हिजरत कदम उठेंगे जो सुए मंजिल तो बीच रस्ते में दम न लेंगे
1: ये तय हुआ था।
0: तो तमाम दैरीना निस्बतों से गुरेज करते नए वतन को वतन कहेंगे
1: ये तय हुआ। वाह वाह वाह।
2: ये आवाज थी जनाब हनीफ असदी की।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अदील बरकी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मनचाहे मेजबान आबिद अली बेग के साथ।

प्रोग्राम के आखिर में एक गीत साहिर अली बग्गा और आयमा बेग की आवाजों में पेश होगा। हांगकांग की शाम आप सुन रहे हैं आरटीएच के रेडियो 3 पर होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के तआवुन से। ये महफिल सजती है हरिद्वार की शाम 8 बजे की खबरों के फौरन बाद। हमारी नशियात आप इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता एक साल के प्रोग्राम आर्काइव में भी सुन सकते हैं। विजिट कीजिए आरटीएच के रेडियो 3 की वेबसाइट। अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम स्मार्टफोन पर सुनने के लिए आरटीएच के ऑन द गो नामी ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए। आज की इस महफिल से अपने मेजबान आबिद अली बेग को इजाजत दीजिए। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। शब्बा खैर और अल्लाह हाफिज़।

दिल से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागन बन कर देती हैं जिसपे पहरा, झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा।

था हसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी रहती।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।